0: ठेला नशाला ठेला नशाला
1: दिवे एफएम के खुम में गटी रहे के फैशन में दिवे ही अमीर लड़ाके के लावे को

अजल वही हैं बारो बादू वेता खुतुन ते हैं हबरु दनी हैं मगे मूनु गलकुनु लेवे हैं जखमु वणी हैं